0: ती वही एफएम नोधिया 1 MHz
1: वायरल वाइप के मिहफ्ता के शोगे देम्मी गेनेस देनी टेट मेक्रेगे स्पोर्ट्स का देहा हुगे हरता हुगे आरएनबी म्यूजिक के फोनी हंदान तक आको देम्मी लवे की हैसते का फास्टोलस फर्स्ट मिलियन वरे गिनेस स्ट्रीम्स होदा फवा वर कामयाब लवे देहास फ्रांसिस वना हरगे वीएमए अवार्ड्स का बेस्ट कोरियोग्राफी के शरफ फेरी अवार्ड वेस मिलावे वनी लिबिफा